कुछ और हो जाते हैं। अब इस साल जो हम लोगों के साथ मुश्किल पेश आ रही है वो ये कि ये जो हम मिलकर फर्श अज़ा बनाते थे, एक जगह सब जमा होते थे, बैठते थे, एक माहौल बनता था, बदकिस्मती से इस साल हम उस माहौल से महरूम रह गए बहुत सारी जगहों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ ममालिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अज़ा के अय्याम में थोड़ी एहतियात के साथ वो सारे काम अंजाम पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा करना मुमकिन नहीं रहा। जैसा कि आप कैनेडा के अंदर टोरंटो में ये मुश्किल आपके सामने भी आ रही है कि बहरहाल वो इज्तिमाई मजालिस इस वक्त मुनक़िद नहीं हो रही, तो अज़ीज़ान मोहतरम फिर इसको कैसे कंपनसेट करें? आप अपने घरों के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं और इन मजालिस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बात तो नहीं है कि आप सेंटर में तशरीफ़ लाते, इमाम बारगाह में होते, फ़र्श अज़ा होती और सब लोग मिल के बैठे होते, ज़ाहिर है कि वो बात नहीं है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैं अज़ीज़ान मोहतरम आपसे कुछ दरख्वास्त करूँगा और आपसे कुछ इल्तिजा करूँगा, और वो दरख्वास्त मेरी ये है कि जो भी फैमिली के हेड हैं हमारे ख़्याल में उनकी ज़िम्मेदारी है, और ज़ाहिर है कि इसमें मर्द भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं जो इस पूरी फैमिली को लेकर चल रहे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि मजलिस के टाइम पर जिस जगह पर आप ये देख रहे हों उस जगह पे मजलिस का माहौल बनाइए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये COVID-19 की मुश्किल हमारे पास मौजूद है और ये बीमारी मौजूद है, तो उस वक्त तक के लिए आप जब भी वीडियो पर मजालिस देख रहे हैं तो आप इसको कहीं भी बैठ के मत देखें। मजबूरी कुछ और होती है, कोई इंसान मजबूर हो सकता है वो गाड़ी में चलते हुए देख रहा हो, कोई ट्रैवलिंग करते हुए देख रहा हो, कोई बीमारी की वजह से अपने बेड के ऊपर बैठ के देख रहा हो, लेट के सुन रहा हो, ये सब पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई मुश्किल नहीं है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर के अंदर एक जगह रख लीजिए। वैसे भी सब लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने घर में छोटा सा एक अज़ाखाना बनाते हैं, तो अपने घर में एक जगह रख लीजिए जहाँ पर आप बैठकर सब लोग इन मजालिस को देखें। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम एक फ़र्श अज़ा से अगर महरूम हुए थे तो हमने सैकड़ों फ़र्श अज़ा बना दी। हम एक सेंटर के फ़र्श से महरूम हुए तो हमने सैकड़ों जगहों के ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस के ऊपर हमने वो फ़र्श अज़ा बनाई और उस जगह के ऊपर उन बरकतों को हासिल करने की कोशिश की जो मजलिस की होती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको वो पुराना जुमला याद दिलाऊंगा और जो मैं और आप बचपन से सुना करते हैं और हमारे ख़्याल में कई एतबार से इसमें हकीकत है, और वो ये है कि इन मजालिस के अंदर मुक़द्दस हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर वो ये कि अपने घरों के अंदर बैठने के लिए सही जगह बनाइए, मजालिस का एक एनवायरनमेंट बनाइए। अल्लाह करे कि मेरे और आपके घरों के अंदर वो मुक़द्दस हस्तियाँ तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह उनकी बरकतों से, उनकी नूरानियत से हमारी और आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा नूरानियत बढ़े इंशाअल्लाह ताला। इस नूरानियत को हासिल करने के लिए, अहले बैत अत्हार की नज़र लुत्फ को हासिल करने के लिए एक बार फिर दुरूद भेजें मुहम्मद व आल मुहम्मद पर। اللهم صل على محمد وآل محمد। अशरा मजालिस की ये पहली मजलिस है, और पहली मजलिस में जो मैं आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ इस एक अहम नुक्ते के अलावा जो अभी अर्ज़ किया, दो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बात तो ये कि आज़ादारी का जो ओवरऑल मैसेज है वो मैसेज क्या है? आज़ादारी का अगर मैं एक लिहाज से एक जुमला इस्तेमाल करूं, इसका सिलेबस क्या है, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। और इसके साथ जो पॉइंट अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि जो 10-12 अय्याम के अंदर हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं उसका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को आपकी खिदमत में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज़ादारी का ओवरऑल मैसेज क्या है, आज़ादारी के ज़रिए से हमें क्या पैगाम मिल रहा होता है, इसके ऊपर चंद जुमला तर्ज करूँगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू में हमने कई दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खुदा तआला ने हमें अज़ा की सआदत नसीब की है, और थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड के ऊपर तवज्जो दें तो हमें खुद ब खुद समझ में

कभी इंसान ऐसे डेज में होता है, ऐसे टाइम्स के अंदर होता है कि जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपेरेंटली लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, परसेप्शन क्या होना चाहिए। और कभी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है कि हर तरफ से मुश्किलात आ रही होती हैं, लगता है जैसे इंसान डेडलॉक के अंदर फंस गया, उस वक्त बिहेवियर क्या होना चाहिए। एक्चुअल जो मेरा टॉपिक है इन 10-12 दिनों के लिए वो ये टॉपिक है। और ये क्यों टॉपिक मैंने इंतखाब किया, उसकी खास वजह ये थी, जैसे कि आप जानते हैं वो ये कि हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इस बीमारी की वजह से बहुत चीज़ें सख्त हुई हैं। और हकीकत ये है कि अब तो शायद इसने अपने आप को खोलना शुरू किया है कि इसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इसकी वजह से लोगों की जिंदगियां कैसे तब्दील होंगी। अभी तो किसी तरह से चल रहा है मामला, और अब हमें पता चलना शुरू हुआ है कि नहीं, ये फौरन जाने वाली चीज़ नहीं है। जब पहले शुरू हुआ था तो पहले तो लोग ये बातें कर रहे थे, भाई समर आएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। समर आ गया और मामला ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये बातें हुई कि भाई कुछ दिनों की बात है, फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कुछ दिनों का मामला नहीं है, ये भी काफ़ी लंबा चलेगा। पता नहीं कब इसकी वैक्सीनेशन बनेगी जो सक्सेसफुल हो, फिर वो वैक्सीनेशन कब लोगों तक पहुंचेगी, कब लोगों का कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ के ऊपर वापस आएगा। तो ये तो लंबी कहानी है अभी। तो फिर मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, ज़िंदगी में सख्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। हाँ हैं, पहले भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में सख्तियाँ थी, तो फिर इन सख्तियों पे परसेप्शन क्या होना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। मतलब मैं किसी से मिलूंगा, मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो मिसाल के तौर पे मैं किसी से मिलता हूँ, वो कहता है कि भाई मौलाना ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अब मैं उसको बता रहा होता हूँ, भाई ये करो ये करो ये करो, वो कहता है नहीं मौलाना मुझे एक छोटी सी कोई दुआ बता दें। बात सही है, दुआओं से बहुत सारे काम होते हैं, लिमिट्स क्या हैं, दुआ अपना असर कैसे देती है। इंसान की ज़िंदगी में सख्तियाँ हों और उन सख्तियों के नतीजे में इंसान कुछ दुआएं पढ़े, ये वो बिहेवियर है जो अल्लाह ने हमें सिखाया है, अंबिया ने हमें सिखाया है। लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या है, वो दुआएं कैसे असर डालती हैं, वो दुआएं कैसे असर करती हैं। जब दुआओं पर असर हो जाता है तो फिर क्या होता है, सारी मुश्किलात ख़त्म। तो फिर अंबिया को मुश्किलात क्यों आती हैं, औलिया औसिया को मुश्किलात क्यों आती हैं। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये एक थोड़ी सी पिक्चर है उसकी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। और मुझे मेरा ख्याल ये है कि जो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ये वो होंगी जो आप अपनी लाइफ में फ़ील भी करेंगे कि हाँ ये हमारी लाइफ में हुआ है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, आपको क्या चीज़ इत्मीनान देती है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो अपनी ज़िंदगी में सख्त तजुर्बों से गुजरे हैं, तो हम पूछ सकते हैं उनसे कि आपने किस चीज़ से इत्मीनान लिया, पीस कैसे मिला आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी जो हमारी लाइफ के अंदर हैं। और ख़ासकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आगे आने वाले अय्याम बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेकर शायद ना आए, कुछ सख्तियाँ लेकर आएंगे। और फाइनली अगर मैं एक और बात कहूँ आपकी खिदमत में, तो फिर मैं ये कहूँगा कि देखिए हम गैबत के ज़माने में हैं, ये गैबत का ज़माना इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, फिर ज़हूर का एक ज़माना शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हम सबको अपने मौला का ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। اللهم صل على محمد وآل محمد। लेकिन हम सबको मालूम है कि गैबत जैसे जैसे अपने एंड की तरफ जाएगी, ट्रबल्स बढ़ेंगी, टाइम टफ होता चला जाएगा। और अब मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे पास रिवायतों में मौजूद है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स आएंगे, डिज़ीज़ आएंगी, वॉर्स होंगी और बहुत सारे लोग मरेंगे उससे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफ़िकल्टीज़ के अगेंस्ट
जो भी हमारा परसेप्शन अहले बैत ने हमें सिखाया।

ये उसका राइट टाइम है, हमें सीख लेना चाहिए। अलबत्ता सिर्फ डिफिकल्टीज के अगेंस्ट नहीं, अगर आप आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं आ रही आपके लिए, तब भी आपको पता होना चाहिए परसेप्शन क्या होना चाहिए। और मैं इसको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि किस तरीके से लोगों ने मिस्टेक्स की हैं। अच्छे लोग थे, समझ नहीं पाए हमें क्या करना है। आसानी में बाज़ औक़ात नहीं समझ पाए, बाज़ लोग सख्ती में नहीं समझ पाए, तो भाई पहले से सीख लो कि अगर ऐसा हुआ कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आ रही, तो खुदा न करे नाऊज़ बिल्ला ऐसा ना हो कि आप रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, या खुदा न करे नाऊज़ बिल्ला ताला अगर मुश्किलात आए चली जा रही हैं और आप परेशान हो रहे हैं, तो भाई पहले से सीख के रखो कि जब मुश्किलात आती हैं तो क्या करना होता है, अल्लाह के रास्ते पर बाकी कैसे रहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरा टॉपिक है और ये वो मैसेज है जो हम बहुत अच्छे तरीके से अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की सीरत से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे मामूलन जब भी वेस्ट में पढ़ रहा होता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि मौलाना उर्दू ज़रा हल्की रखिएगा, इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स करते रहिएगा, लेकिन मैं जब टॉपिक बना रहा होता हूँ तो बाज़ औक़ात उसमें ऐसे वर्ड्स डाल देता हूँ जो वेस्ट में बाज़ लोग कहते हैं भाई मौलाना ये थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन क्या करें भाई, उर्दू का भी एक लेवल है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आजमाइश और आसाइश अहले बैत अथार की सीरत की रोशनी में, आजमाइश और आसाइश अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम इन दोनों को देखना चाहेंगे कि भाई अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई आसानी आती है और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है, अलबत्ता मैं इसको एलैबोरेट करूँगा, मज़े से ज़िंदगी गुजारना कब पॉजिटिव होता है और कब बाज़ औक़ात अच्छा नहीं होता, तो उसके रूल्स क्या हैं, उसके लाइंस क्या हैं, और अगर सख्ती आती है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस लाइंस क्या हैं, कैसे इस काम को निपटना चाहिए। और ये मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर अर्ज़ करूँगा कि सीखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे एक बात समझ में आती है, बहुत दफ़ा, कई दफ़ा मैंने इसको फ़ील किया है, वही कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ लोग ज़्यादा ईगर हैं सीखने के लिए, तो खुदा हमें कुछ एक्स्ट्रा सिखा देता है कि हम लोगों को बता सकें। तो शायद मुझे लगता है उनकी अच्छी नीयत के सदक़े में खुदा हमें भी सिखा देता है। तो मुझे एक बात समझ में आई है, वो ये कि अगर मुझे खुदा से सीखना है तो मुझे खुदा के सामने नियत करनी होगी कि खुदा तू मुझे सिखा दे ताकि मैं अर्ज़ कर दूँ। जो कुछ है वो खुदा की तरफ से, हम में से किसी के पास कुछ नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास इतनी किताबें हैं, मैंने देखी हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, ये सब मजाक है, किसी के पास कुछ नहीं है। वमा रमई था इज़ रमई था वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ नबी, जब आपने तीर भी चलाया तो आपने तीर नहीं चलाया, खुदा ने चलाया। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ है वो खुदा के लिए, व लिल्लाहि मा फिस समावाती वल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन व आसमान में सब खुदा के लिए, उसकी कब्ज़े कुदरत के अंदर है। और हम पर फ़र्ज़ है कि जब भी हम किसी अच्छे काम को अंजाम देने की सआदत हासिल करें उसको रेफ़र करें खुदा की तरफ। हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ करवाने वाला है वो खुदा है, ये 2+2=4 है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह से उम्मीद रखें, सीखने के लिए खुदा से तलब करें कि खुदा हमें इंशाअल्लाह इन दिनों में अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के रास्ते को सीखने समझने की सआदत दे, तो खुदा हमारे दिलों को वसी कर देगा। और ये ज़िक्र अहले बैत है, इसकी इतनी नूरानियत है, इसकी इतनी खूबसूरती है। हम दुनिया वाले हैं, हमें नहीं मालूम, हकीकत ये है, मैं भी आपसे कह रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं मालूम, लेकिन हम सबको मालूम है कि कुछ रियलिटीज़ ऐसी हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते, उनको कुछ एहसास कर सकते हैं। और हम सबको मालूम है अहले बैत के ज़िक्र में नूरानियत है, और हमारे पास रिवायात में मौजूद है, पता नहीं कितनी रिवायात हमारे पास इस थीम के ऊपर मौजूद हैं कि अपने दिलों को, अपने कुलूब को, और इसके अंदर भी एक गहराई है कि दिल किसे कहते हैं।

ti lo jate और राबियों के बयान को सुनते हुए समझ में आता है। एक राबी बयान करता है, कहता है बीबी सैयदा जब दरबार खिलाफत की तरफ जा रही थी तो सैयदा का जाना जवानों की सूरत में था और वापसी ज़ईफ़ा की सूरत में थी। और जो मेरे जैसे अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खिदमत गुजार के लिए जो अगर ऐसा है तो हमें फ़ख्र हासिल है। अगर मसाइब के किसी पहलू को बयान करना सबसे सख्त समझ में आता है तो वो वक्त था जब बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के कफन को तैयार किया मौला अमीरुल मोमिनीन ने और इमाम हुसैन से कहा कि बेटा अपनी माँ से अलविदा करो। मज़लूम बच्चे यतीम माँ से महरूम अपनी माँ से अलविदा करें। सैयदुल शुहदा नज़दीक आए और फरमाया पहले मेरी माँ मुझसे अलविदा करें। अजीज़ो अजीब मौका था। एक तरफ माँ की मोहब्बत है, एक दफ़ा सैयदुल शुहदा का मकाम और मर्तबा और अमीरुल मोमिनीन की रिवायत की खुदा की कसम फातिमा के बंदे कफन टूटे। दस्त सैयदा बरामद हुआ और निदाए गैबी आए कि ए अली बच्चे को माँ से अलहदा कर दो वरना आसमान टूट पड़ेगा। ये वो मौका था जब इमाम हुसैन अलविदा कर रहे थे अपनी माँ से। फिर एक मौका आएगा जब बीबी सैयदा आई है अलविदा करने के लिए इमाम हुसैन को। ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي

आदमी वो जो कब्र में चीज साथ ले जाए। कई चीजें हैं दुनिया की हम कब्र में साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इंसान इसकी तरफ कोशिश करे। इसके लिए हमारे पास कई बरज़ख़ी जिंदगी के लिए वाकयात है, और वाकयात में पैगंबर इस्लाम ने बास कहानियां आइम्मा अथार से मजबूत हैं, पैगंबर इस्लाम से हैं, पैगंबर इस्लाम ने हमें आगाह किया।